www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

0: मौसीकी के सुर और तान, सुर और तान, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: वेलकम बैक टू फैकल्टी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम। डॉक्टर साहब, ऑनगोइंग जो हमारी सारी कन्वर्सेशन चल रही थी, अभी तक हमने जो सारी बात, एक विजन सेट था अपने, एक यूसीपी के अंदर रिसर्च सेंटर बनाए, अब हमने कैन सेट के बारे में जाना, तो मज़ीद अगर इसके अंदर हम डीप सर्च करें तो एक फ्लोट सेट, फ्लोट सेट यानी एक फ्लोटिंग सेटेलाइट का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जो लिसनर्स हैं जो इस रिसर्च के अंदर या स्पेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या जो बिगनर्स, उनके लिए थोड़ा बताएं कि फ्लोट सेट होता क्या है।
3: बेसिकली फ्लोट सेट का जो हमारा मिशन था, ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, जब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्बर्ग जर्मनी के साथ कोलेब्रेशन में काम करना शुरू किया, यूसीपी ने। तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सर्जियो मोंटेग्रो, और वहाँ पर इन ये हैं वहाँ पे चेयर अपने सेटेलाइट सिस्टम्स के। तो इनके साथ ड्यूरिंग दिस कोलेब्रेशन हमने फ्लोट सेट के ऊपर काम शुरू किया। और फ्लोट सेट बेसिकली क्या है कि सेटेलाइट को हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि जिसके थ्रू हम अपने सेटेलाइट को एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं। जिस तरह स्पेस में आप एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में होते हैं कि जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, तो ये एक एयर बेरिंग यूनिट के ऊपर आप सेटेलाइट को फ्लोट करवाते हैं, जिस तरह हवा में वो फ्लोट कर रहा है। और अब हम उसको क्या करते हैं कि उसके एटीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपने उसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, किस स्पीड पे रोटेट कराना है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि मिसाल के तौर पे जब आपका स्पेस में सेटेलाइट है तो उसने सन को पॉइंट करना है, ग्राउंड स्टेशन के ऊपर एंटेना को फोकस करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फ्लोट सेट के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं यूसीपी के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और बेसिकली सेटेलाइट का एटीट्यूड कैसे कंट्रोल करना है, उसके साथ रिडार को कैसे इंटीग्रेट करना है, सोलर पैनल को कैसे डिप्लॉय करना है, और सन को कैसे ट्रैक करना है, इन मिशंस के ऊपर काम करते हैं।
2: ये फ्लोटिंग सैटेलाइट,
3: फ्लोटिंग सैटेलाइट करता है।
2: तो डॉक्टर साहब, अगर फ्लोटिंग सैटेलाइट ये सब करते हैं, क्यूब सेट का बीच में क्या एक रोल होता है?
3: क्यूब सेट जो बेसिकली होता है, क्यूब सेट हमारे पास जो सैटेलाइट है, ये वो सैटेलाइट है कि जिसको एक्चुअली रियल टाइम में स्पेस के अंदर लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्च कैप्सूल्स होते हैं स्टैंडर्ड साइज के। वो स्टैंडर्ड साइज होता है 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर वेथ, यानी कि 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जो मिनिमम साइज है आप सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इस क्यूब के ऊपर आप बेसिकली क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, कैन सेट से फिर आगे आते हैं और क्यूब सेट के ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जो कैन सेट का सब सिस्टम था, सेंसर्स थे, कैमरा मॉड्यूल था, एंटीना सिस्टम थे, उनको क्यूब सेट यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर

0: जो कि ग्राउंड पे है, जो जहां पर आप उसको टेलीमीटरी और टेली कमांड लेते हैं, सारे डाटा को रिसीव करते हैं या सेटेलाइट को कमांड देते हैं, तो वो हमने पूरा ग्राउंड स्टेशन भी यूसीपी में भी डेवलप किया हुआ है। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सामीन को भी अर्ज करना चाहूंगा, कि रिसेंटली हमने क्या किया है कि हमने नोवा सेटेलाइट के सिग्नल्स को कैप्चर किया। नोवा सेटेलाइट एक सेटेलाइट है जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है और फ्री डाटा को एक्सेस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली वहाँ से हमने उसके डाटा को रिसीव किया और पूरे सेंट्रल एशिया की हमने पिक्चर्स को कैप्चर किया है, और ये पिक्चर्स जो हैं फर्दर जो हैं वेदर स्टेशन की पिक्चर्स हैं, जिसको फर्दर आप यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में वेदर की प्रिडिक्शन के लिए, आप एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए आपको जो आप देखते हैं आमतौर पर खबरों का हाल में एंड पे जो मौसम की सूरत हाल आती है, तो ये वही वाला इमेज हमारे स्टूडेंट्स ने अपने ग्राउंड स्टेशन से भी कैप्चर किया।
1: मतलब कि ये तो स्वामी देख नहीं सकते, मैं इस वक्त इस पेज के ऊपर बकायदा देख रहा हूँ कि हमें आइडिया भी नहीं है कि स्टूडेंट क्या क्या इस टाइम उसके लिए फैसिलिटी क्या क्या कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इदारे छोटे से इदारे के अंदर बैठे हुए भी वो इतने एक इंटरनेशनली जो सैटेलाइट्स हैं उनको एक्सेस करके उनसे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे अगर यूसीपी की नहीं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेशक नेशनल लेवल के ऊपर, एक स्टूडेंट जो है इंटरनेशनली जो है वो एक्सेस कर रहे चीज़ों को।
0: अब ये वाली पोस्ट हमारी जो थी, क्या कहते हैं, स्पार्को ने बहुत इसको लाइक किया था, जो हमारा नेशनल स्पेस सेंटर है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: उनका स्पेस अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्राइव है, वहाँ पर उधर शेयर की गई है। और इसके तकरीबन एक महीने बाद हमारी उनके साथ स्पार्को के साथ दो चार मीटिंग हुई और रिजॉल्व के साथ हम इन कॉन्टेक्ट आए, और हम पहली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने जिनके स्टूडेंट्स ने अपना रिसीवर डिज़ाइन किया है, अपने एंटीना सिस्टम डिज़ाइन किया है और फिर एक सेटेलाइट इमेज को कैप्चर किया है। और हमारा अभी जो है नेक्स्ट प्रपोजल चल रहा है जिसके अंदर हम फर्दर काम करेंगे इसको एनहेंस करने के लिए।
1: तो डॉक्टर सर, जैसा हमने फर्दर आपका काम चल रहा है, तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं तो
0: हाँ जी,
1: उसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे सामीन को कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से फिलहाल इस टाइम चल रहे हैं।
0: ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यूजुअली हमारा फोकस होता है कि हम किसी तरीके से स्टेम एजुकेशन को इंटीग्रेट करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ।
1: अच्छा,
0: और उसमें हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके डायरेक्शनल कपलर्स हैं, पावर डिवाइडर्स हैं, विवाल्दी एंटीना है और आपके ब्रांच लाइन मिक्सर्स हैं। ये तमाम चीज़ें बिना स्टूडेंट्स हमारे डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर एक रेडार को डेवलप करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा ये 70% तक ये रेडार हमने डेवलप कर लिया हुआ है।
1: अच्छा।
0: कुछ इसमें ऑनगोइंग टास्क चल रहे हैं। फर्दर मोर हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंटीनास डेवलप किए हैं कि जो कि ग्राउंड स्टेशन में यूटिलाइज होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एंटीनास हैं कि जो कि कैन सेट की रेंज को एक्सटेंड करते हैं। अब इन एंटीनास के अंदर आपके पास यागी एंटीनास हैं, QFH एंटीनास हैं, क्रॉस डाइपोल्स हैं। अब ये एंटीनास क्या करते हैं, इन्हीं एंटीनास की मदद से हमने नोवा सेटेलाइट का सिग्नल कैप्चर किया और दोबारा उसका इमेज जनरेट किया।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा हम क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशंस के लिए। कुछ RF कंपोनेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं, फिल्टर्स, एंटीना, वेव गाइड्स, एडॉप्टर्स, अरेज, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो कि बच्चे हमारे एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ ना एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं ना साइंसेज से बड़ा दूर हमेशा रहा हूँ, मैंने बिजनेस ही ज़्यादा पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने आपकी बारे में आपने मुझे बताया तो मेरा तो खुद बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैं ज़रूर इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च भी करूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि एक नेशनल लेवल के ऊपर एक इदारा इस तरीके से काम कर रहा है, आप जैसे फाउंडर्स और टीचर्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से मज़ीद बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामेईन कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए फैकल्टी और FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम, यूसीपी स्पेस रिसर्च सेंटर के फाउंडर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सारा अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा सारा विजन सेट है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब देखा जाए तो कोई अब जो हमारे एक स्टूडेंट है, अब हर चीज़ ऑन फील्ड जाने से पहले कुछ ना कुछ हमें नॉलेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई इस टाइम कोई स्पेस टेक्नोलॉजी कोई कोर्स वगैरह इस टाइम कोई डेवलप है इस टाइम यूसीपी के अंदर?
2: बिल्कुल, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेमेस्टर में हमने कोर्स ऑफर किया था स्पेस टेक के नाम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से। और ये मेरे ख्याल है ये कोर्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है,
1: स्पेस टेक
2: का यूनिवर्सिटी में।
1: मज़ीद बताइएगा क्या
2: इस कोर्स में बेसिकली क्या करते हैं, स्टूडेंट को A to Z शुरू से लेके बिल्ड करता है वो अपना पूरे का पूरा सेटेलाइट, स्टूडेंट सेटेलाइट जो कैंसेट की मैंने बात की। फर्दर मोर वो उसमें डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट एंटेनास, उसकी कम्युनिकेशन को एनहेंस करते हैं और फिर आप स्पेस से डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमने इमेज कैप्चर किया और उसको हमने यूटिलाइज किया। तो इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे स्पेस टेक का जो कोर्स है इसके अंदर 3 hours a week हम इसको हैंडल करते हैं यूनिवर्सिटी में और 3 credit hours का कोर्स है और इसमें सेटेलाइट सब सिस्टम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट ऑर्बिट्स, लिंक बजट्स, एटीट्यूड कंट्रोल, इवन PCB डिजाइनिंग, PCB मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, एंटीना डिज़ाइन, सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों को टच किया जाता है।
1: 3 घंटे एक हफ्ते तो ये टोटल कितने हैं?
2: टोटल हमारे पास 16 weeks होते हैं।
1: 16 weeks
2: तो और उसके एंड पे हमारा एग्जीबिशन हुआ था जिसके अंदर हम सारे स्टूडेंट्स अपना ये कैंसेट का एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी हिट इन UCP एटलीस्ट। और इससे पहले
1: 48 hours का एक पूरा कोर्स है।
2: हाँ जी, तो ये इसके अंदर आप जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को जो टच करते हैं उसमें EZEDA, कैडेंस, GNU रेडियो, CST, आपके पास NSYS, HFSS होता है, सॉलिड वर्क्स होता है जो मैकेनिकल डिजाइन के लिए यूज करते हैं, MATLAB कोडिंग के लिए यूज करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए लेटेक्स को हम यूटिलाइज कराते हैं। तो इट इज वेरी वेरी मच हैंड्स ऑन कोर्स और स्टेम बेस्ड कोर्स है।
1: अच्छा,
2: और इसको इंशाल्लाह ताला हम अभी फ्यूचर में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि FOIT और FOST यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स में आएं और पढ़ें। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवन हु हैज बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ही कैन जॉइन अस और वो आगे अपना उसको आगे हम खुद लेकर चलेंगे, इसको ऐसे डिजाइन किया।
1: अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आप बीच में काफी दफा स्पार्को का जिक्र आया, यानी एक इंडस्ट्री लिंक्ड इंडस्ट्री के साथ आपने अपने स्टूडेंट्स को लिंक किया हुआ है फील्ड वर्क के लिए। इसके अलावा कोई कोलैबोरेशंस और लिंकेजेस अवेलेबल हैं UCP के या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो फील्ड में जाकर काम कर सकें?
2: बिल्कुल, हमारी जो कोलैबोरेशन है इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप हो चुकी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ विस्बर के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं, मोरक्को में हम असिस्को के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं, जापान में हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारा इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, और तुर्की में हम लोगों के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं। उसके अलावा इस सर्कल को हमने एक्सटेंड किया हुआ है नेशनल लेवल पे भी, और नेशनल लेवल पे हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कॉन्टेक्ट किया डिफरेंट प्रोफेसर्स को और उन्होंने काफ़ी इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और अब वो भी हमारे साथ मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास स्लम्स में डॉक्टर सबी अनवर साहब हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया कि जो चीज़ें हमारे पास UCP में अवेलेबल नहीं है तो वो हमें वहाँ पर अलाउ करते हैं और हम जाके लम्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह डॉक्टर हदीद हैं गुलाम इसा खान में, उनके साथ हम इन कॉन्टेक्ट हैं। सजादुररहमान साहब हैं हमारे पास नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में, हमारे पास अवैस अहमद खान साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UET लाहौर में, और इन्होंने फ्लोट सेट की जो हमने मेड इन पाकिस्तान मॉडल बनाया, काफ़ी हमारी सपोर्ट की इनकी हेल्प की वजह से हमने उसको दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हैं हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से, और डॉक्टर वकार हैं जो इस वक्त NESTEP में है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में।
1: अच्छा,
2: तो हम इस नेटवर्क को भी आसस्ता ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में लेके हम इसको काफ़ी आगे तक
1: इंशाल्लाह। तो सामीन, जैसा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें मैं आपको पहले भी बताया, मैं फिर कहूँगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपकी बातें सुन के मैं इतना को मोटिवेट हुआ हूँ इस टाइम कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं देखूँ, मैं भी आगे से जरूर स्पेस रिसर्च सेंटर भी चक्कर लगाऊंगा। और हमारे सामईन, मैंने तो बहुत सीखा और हमारे सामईन भी यकीन है जो सुन रहे थे, ये कैसा एक ऐसी फील्ड है, ये बड़ी नैरो डाउन है और बहुत कम लोग है, लेकिन जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है और यकीन वो जैसे मैं खुद भी बहुत खुश हुआ और बहुत मोटिवेट हुआ, हमारे सामईन भी मोटिवेट हुए होंगे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ एक वक्त था जो हमारा इख्तिताम को आया। मुझे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमारी पहली मुलाकात थी और इंशाल्लाह ताला हम मजीद शोज भी करेंगे इसके ऊपर। सामईन, हमारे साथ मुझे डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम साहब, फाउंडर ऑफ यूसीपी स्पेस रिसर्च सेंटर, और आप सुन रहे थे फैकल्टी और एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इसी तरह किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke din mein.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई दुनिया। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डिजिटलाइज हो रहा है, डिजिटल हो रही हैं चीज़ें, पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने देखी कि बहुत तरक्की हो रही है, अभी भी हो रही है, और अब हमें थोड़ा सा जो एक रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से और डिजिटली देखने को मिल रहा है। 3G 4G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया किस तरह से रोल अदा कर रहा है इन चीज़ों में। तो आज़म, आप निकाह के हवाले से कुछ बात कर रहे थे।
2: जी, मैं निकाह के हवाले से बात कर रहा था कि निकाह में हम आने वाले दौर के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं जो कि निकाह को मेरे ख्याल से मजीद सिक्योर बना रही हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़े से इसके एस्पेक्ट्स को इस तरीके से देखें कि पहले निकाह, जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले निकाह किया जाता था मैन्युअली, किसी एक लड़का लड़की का एक निकाह है तो एक मस्जिद से एक मौलवी साहब को बुलाया जाता था, उनके साथ एक रजिस्टर होता था और उसमें सारे उनके जो भी रिकॉर्ड होते थे वो उसमें लिखते थे और जो भी इसमें गवाह आते थे उनमें गवाहों की गवाहियाँ डलती थी और किस तरीके से एक वकील को ऐड किया जाता था और जो भी सारा प्रोसेस होता था और वही एक रिकॉर्ड के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते थे और वही मेरे ख्याल से एक एविडेंस होता था कि ये अब जो एक पाक रिश्ते के अंदर ये दोनों लड़का लड़की बंध गए हैं आपस के अंदर। मगर अब हम देख रहे हैं कि इस चीज़ में भी चेंजिंग्स आ गई हैं, इस चीज़ भी ये चीज़ भी डिजिटलाइज हो गई है, हमारे मौलवी साहब भी डिजिटलाइज हो गए हैं। हमारे जो खूबसूरत से एक मौलवी साहब होते हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी लोगों के सवाल भी बहुत से उठेंगे, मगर हमारे जो खूबसूरत से मौलवी साहब होते हैं उनको भी सोसाइटी ने डिजिटलाइज कर दी है, क्योंकि वो भी फेसबुक पर अपनी उनकी एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल होती है तो सोसाइटी ने कहा कि क्यों ना आपको टैप भी दिया जाए और टैप के थ्रू अब आपने कहा किया जाए ताकि आप भी जरा बैठे हुए तो मजीद प्रोफेशनल लगे। माशाल्लाह से वो प्रोफेशनल पहले भी लगते थे मगर मजीद उनमें एक चेंजिंग्स को ऐड किया गया।
1: जी आज़म, आपने टैबलेट की बात की, आपने थोड़ी सी डिजिटलाइजेशन की बात की, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये तजवीज़ आ रही है कि अब मौलवी हजरात को और जो हमारे इमाम मस्जिद होते हैं मोस्टली इन्होंने ही निकाह का बेड़ा संभाला होता है और यही निकाह ख्वां भी होते हैं और हमारे जो इलाके में निकाह को पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठेगा और रजिस्टर पर डिटेल्स डालेगा और निकाह पढ़ा लेगा, ऐसा नहीं है। ये बकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन काउंसिल्स में रजिस्टर्ड होते हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अहम होती है और उसी की बेस पे जो ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम निकाह कहते हैं, जो दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से बहुत अहम है और एक नए रिश्ते का आगाज़ और तमाम चीज़ें जो हमने गुज़िश्ता ब्रेक से पहले भी हमने डिस्कस की हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है और इसके हवाले से तजवीज़ पेश की जा रही है कि एक टैबलेट का एक सिस्टम लाया जाएगा। पहले हम देखते थे कि मौलवी हजरात जो हैं वो गवाहान की मौजूदगी में जो हैं वो थंब प्रिंट्स और सिग्नेचर्स और तमाम जितनी भी आपको पता है कि जब एक निकाह होता है तो उसके हवाले से डाइवोर्स राइट्स और इस तरह के भी बहुत सारे मामला होते हैं जो निकाह से पहले डिस्कस होते हैं, निकाह से पहले जिनके एग्रीमेंट तय किए जाते हैं लड़के वालों की जानिब से और लड़की वालों की जानिब से कि हक महर हक के हवाले से, ये बहुत सारी बड़ी डिटेल्स होती हैं जो हमें बहुत मामूली सी लग रही होती हैं, लेकिन जब एक दफ़ा निकाह हो जाता है और अल्लाह ना करे बाद में इस तरह के

0: सुन के ही बड़ी एक दिल को फैसिनेट कर रही है कि अब जो हम पहले देखते थे कि जिस तरीके से मौलवी साहब आते हैं और आके एक खाते में सारे चीज़ों को रिकॉर्ड को रखते हैं, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सिक्योर भी है कहीं ना कहीं हद तक। जिस तरीके से भी आपने बात बताया कि अल्लाह पाक हर एक रिश्ते को अपने एक पाक बंधन के अंदर रखे और उनको उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान के अंदर रखे, मगर कुछ लाइफ में हम मसले देखते हैं क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें कुछ बुराई नहीं है, मगर हम कुछ इस तरह के इश्यूज़ भी सोसाइटी के अंदर देखते हैं। मगर जब आप इस तरीके से अपनी हर चीज़ को अपनी सिक्योर तरीके से एक लेके आगे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आने वाले वक्तों के अंदर अगर कोई आपको इस तरह का मसला दरपेश आता है तो आपके पास इजीली हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा और हर चीज़ आपके पास सिक्योर तरीके से सेफ पड़ी होगी। मगर मोस्टली हम ये देखते थे कि अगर कुछ कागजात हैं, कोई कागजात ऑब्वियसली बात है आप उसको जितना मर्जी सेव करके रख लो मगर कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं आपसे, बच्चों ने छेड़ दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया। मगर डिजिटल की एक खूबसूरत बात यह है कि आपका जितना भी सारा डाटा होगा वो रिकॉर्ड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अगर रिकॉर्ड अगर वो फॉर एग्जाम्पल कहीं इधर उधर मूव हो भी जाता है तो उसके अलावा जो जहां पे वो सब चीजें जिस तरीके से अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीजों को पेश किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रिकॉर्ड को रखा जाएगा और उसकी डिफरेंट कॉपीज भी रखी जाएंगी ताकि अगर तो खुदा ना खास्ता कोई रिकॉर्ड आपका इधर उधर होता भी है तो उसकी कॉपीज अवेलेबल होंगी ताकि कभी भी आपको लाइफ में किसी भी किस्म की जरूरत पड़े उस सब रिकॉर्ड की, उस डेटा की, तो ईजिली आप उसको यूटिलाइज कर सको। दूसरी अगर हम बात की जाए जिस तरीके से हमने अभी आपने बात बताई कि जिस तरह की मैंने जब ये फर्स्ट टाइम ये बात सुनी तो मेरे जहन ने ये सवाल उठाया कि हमारे जो यहाँ के मौलवी साहब हैं, जितने भी हमारे मौलवी हजरात हैं, उनका जो रुझान होता है वो थोड़ा सा कम होता है इस तरफ टैबलेट्स में, मोबाइल फ़ोन्स पे और डिफरेंट इन सब चीज़ों पे उनका थोड़ा सा इतना, जिस तरह एक आम हम कह सकते हैं कि लोगों का रुझान होता है, उनको यूज़ करना आता है, उनको उनके सारे फीचर्स और सेटिंग्स सब चीज़ें का इलम होता है कि किस तरीके से कहाँ पर जाके क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, मगर हमारे जो मौलवी साहब हैं उनको इतना इस चीज़ का खास आइडिया नहीं होता। मगर आपने अच्छा किया ये साथ ही एक चीज़ को क्लियर भी कर दिया कि उनको एक महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उनको आइडिया हो जाए किस तरीके से कहाँ पे क्या काम करना है। अब ये ना हो कि मौलवी साहब बैठे और निकाह करवा रहे हो और साइन कहीं और कर रहे हैं और मौलवी साहब गलत टिक कर बैठे क्योंकि डिजिटल दौर है, एक क्लिक से कितनी चीज़ें बदल जाती हैं ये तो आपको भी पता है, एक क्लिक से न जाने कितनों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं डिजिटल दौर के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक मौलवी साहब गलत टिक की वजह से कुछ इधर उधर ना हो जाए काम, मगर फिर भी इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक जो एक माह की ट्रेनिंग है वो देने का ऐलान भी किया है और बताने और सिखाने का भी एक एक कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट की है कि हम उनको सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: आज़म, मैं सामीन को थोड़ा सा बताता चलूं कि इस हवाले से अभी तजवीज़ पेश की गई है और देखने में ये जितना आपको लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है, जिस तरह हम देखते हैं कि चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, ये सिर्फ डिजिटलाइज नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे मकासद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जिनको मद्देनज़र रख रही है। हम देखते हैं कि अब हर चीज़ डेटा बेस पे चल रही है, हर चीज़ का एक डेटा बेस है, और अगर हम एक किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का डाटा बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो बहुत अहम और एक बुनियादी फैक्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि वो किस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो निकाह और ये यूनियन काउंसिल में जिस तरह ये जो हमारी डाटा की कलेक्शन है और इस तमाम ये जो एक प्रोसीजर है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से कैरी आउट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वो टैबलेट जो है वो नादरा से कनेक्ट होगा और नादरा में आपको पता है कि एक डेटाबेस है जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स पूरे हाथ के, पूरे जो है वो फिंगरप्रिंट्स दोनों हाथों के होंगे, पांचों उंगलियों के होंगे, उसके हवाले से हमारी तमाम डिटेल भी होगी, हम रहते कहाँ पे हैं, हमारी उम्र क्या है, हमारे वालदैन और सारी तमाम डिटेल्स। इस डिटेल को क्यों इतना अहम है, क्यों इसको डिजिटलाइज करना ज़रूरी है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके हवाले से ये जो है हमारे टैक्स के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी, और अगर दुल्हा ने कहीं भी टैक्स नहीं पे किया होगा या दुल्हा साहब मफरूर होंगे या इश्तिहारी होंगे या कोई भी किस्म का उन्होंने क्राइम कमिट किया होगा तो नादरा जब उसको वेरीफाई करेगा तो वो निकाह का जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगा, और ये भी एन मुमकिन है कि ऑन स्पॉट जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट कर ले और जो है वो एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। तो जहाँ इसके अच्छे चीज़ें भी हैं तो मुजरिम और इन तमाम लोगों के लिए मसाइल भी हैं और एक सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ये ज़रूरी भी है। ये इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि टेक्नोलॉजी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी आसानी और हमारे लिए जहाँ हर किस्म की आसानी है वहाँ मसाइल को जो है वो हल करने का, और यकीनन गवर्नमेंट की नज़र होती है कि किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर किया जाए, क्राइम रेट को कम किया जाए और तमाम चीज़ें, तो इसमें वो

0: बहुत जो है बड़ा पहलू भी मौजूद है जिस पर यकीनन जो है वो काम हो रहा है और इंशाल्लाह हमें जल्दी देखने को भी मिलेगा।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आपने टैक्स की बात करके हमें भी और मेरे ख्याल से हमारे सामईन को भी थोड़ा सा आपने हिला दिया कि अब आज ही से होंगे। मैं तो आप सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने सारे टैक्स क्लियर करें। ये ना हो कि आप निकाह के उस टेबल पे बैठ के अपना अंगूठा लगाएं और मौलवी साहब आपको हाथ से पकड़ लेंगे, बेटे अपना टैक्स क्लियर करो पहले। तो ये सब चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं पर ठीक भी हैं और ज़रूरी भी हैं। इसी तरीके से हम मज़ीद इस पर और शादी के जो कल्चर है, अभी तो हमने सिर्फ निकाह की बात की कि निकाह डिजिटल किस तरीके से किया जा रहा है, अभी हम इसे मजीद ऐसी बातें करेंगे जो कि मुझे ऐसा लगता है कि और आपको मजीद फैसिनेट करेंगी और बड़ी एक खूबसूरत सी और बड़ी फैसिनेटिंग सी बातें आगे हमारे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आने वाली हैं। तब तक जरा हमारे साथ बंधे रहिए और इंशाल्लाह आपको जरूर खूबसूरत सी बातें आगे हम बताते हैं।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: वेलकम बैक प्रोग्राम नई दुनिया से, मैं हूं नबील नासिर हुसैन और मेरे साथ मौजूद है आजम तारिक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह निकाह के प्रोसीजर को जो है वो डिजिटलाइज किया जा रहा है और मौलवी हजरात को भी हम थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हवाले से हमने बात की कि किस तरह टैक्स के हवाले से पकड़ होगी और सिस्टम गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिजिटलाइज कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो रही है जो कि यकीनन हमारे क्राइम रेट्स को और इन तमाम चीज़ों को भी करेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। डेटाबेस से हमने कहा कि ये कनेक्ट होगा, ऑब्वियसली जब एक निकाह ख्वां जब निकाह को पढ़ाएगा और टैबलेट पर थंबप्रिंट्स वगैरह लगवाएंगे तो उसका कनेक्ट होना नाजा के थ्रू इंटरनेट थ्रू डेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन जब तक टैली नहीं होगी तो ये प्रोसीजर किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा, और वो बहुत क्योंकि बड़ी फेस्टिव सी सिचुएशन होती है, सब बहुत खुश होते हैं, तो अगर इसमें किसी किस्म का डिले आए या एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे अगर मसाइल हमें देखने को मिले तो ये हमारी खुशियों में जो है ना वो जिस तरह हम कहते हैं कि रंग में भंग डालने वाली बात है, और ये बहुत इसमें से मसाइल भी होंगे। तो सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर तो डाटा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा या उसमें एक लैग आ रहा होगा तो चीज़ों में बहुत सारे मसाइल होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से गवर्नमेंट डील करेगी?
2: मेरे ख्याल से जिस तरीके से भी आपने बात की है कि अगर कोई इस तरह का इशू हमें फेस करने को मिलता है, हम अगर इसमें अगर एक पॉज हमें देखने को मिले तो ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, ना कि सिर्फ दुल्हा के लिए बल्कि उसके जो घर वालों के लिए भी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको इस तरीके से डील कर सकती है कि इसी के मुताबिक कुछ पॉलिसीज को लेके आया जा सकता है, और जिस जगह पे किया जा रहा होगा वहाँ पे ऑब्वियसली बात है पहले इंटरनेट एक्सेस को भी चेक किया जा सकता है।
1: बिल्कुल आजम, 3G 4G का दौर है, और 3G 4G और अब तो यकीनन पाकिस्तान भी जो है इंशाल्लाह 5G के समारात भी जल्दी ले रहा होगा, तो 3G और 4G का होना बहुत ज़रूरी है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब 5G आएगा तो 5G का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी नई तरमीम को देखें या कोई भी एक नया सिस्टम जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है या तरमीम होती है, चेंजिंग्स आती हैं, थोड़ा सा एडवांस करते हैं चीज़ों को, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदतरीज होती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम चीज़ों को जो है ना वो बढ़ते हुए देखते हैं, और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, और हम देखते हैं कि स्टार्ट जो हमारा है दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से हो रहा होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो कैपिटल्स हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स लाहौर और मुख्तलिफ प्रोविंस के, वहाँ से हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, कोयटा की बात करें, पिशावर की बात करें या कराची की बात करें, तो ये इन शहरों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। हम देखते हैं कि जब लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ता चंद बरसों में हम देखते हैं कि हेलमेट पर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, तो हमें वो सख्ती सबसे ज़्यादा जो चलान्स होते हुए नज़र आ रहे होते हैं या उसको जो प्रैक्टिस किया जा रहा होता है, लोगों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, वो बड़े शहरों में किया जा रहा होता है। इसी तरह ये जो निकाह का सिस्टम है इसको भी बड़े शहरों में जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस है, जहाँ पे स्मूथली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे किया जाएगा, थंब प्रिंट्स और तमाम डेटा जिन लोगों का मौजूद है, उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली छोटे शहरों में और देहात की जानिब जो है वो इसको इम्प्रूव किया जाएगा, और यकीनन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा होगा।
2: ऐसा ही है बिल्कुल, और क्योंकि पहले भी कोई भी चीज़ आती है तो वो बड़े शहरों में आती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कि छोटे शहरों में आना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से भी आपने थंब प्रिंट्स की हमने पहले बात की, तो थंब प्रिंट्स की भी बात को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अगर पर्सनली एक चीज़ देखूँ तो मैं हमें कुछ ऐसे इशूज़ देखने को मिलते हैं कि जो कि एजेड लोग होते हैं उनके अक्सर अवकात थंब प्रिंट्स नहीं लगते, तो इसमें क्या वो एक प्रोसेस को किया जाएगा?
1: बिल्कुल ऐसा ही है, जब हम नादरा में भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अक्सर या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके ये अक्सर इश्यूज आते हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके होते हैं, उनकी स्किन जो है वो निस्बतन थोड़ी ढीली हो चुकी होती है या रैश हुई होती है, खुश्क हुई होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से थंबप्रिंट्स नहीं लग रहे होते। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह आपने 3G 4G की बात की कि इंटरनेट अगर कनेक्ट नहीं होगा तो वो बड़ा एक फेस्टिवल की एक जो सिचुएशन होती है उसके अंदर अगर ये एक लैग आ जाए तो बहुत वो जो है वो ख़राब होता है काम। तो इस हवाले से सुनने में आ रहा है ہے اور تجاویز جو پیش کی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارا تھمب پرنٹ نہ لگ رہا ہو تو فیس آئی ڈی کا کلچر ہے, ہم موبائل فونز میں اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ناظرا میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو اس میں وہ ہر طرح کا ڈیٹا لیتے ہیں, آپ کے تھمب پرنٹس بھی لیتے ہیں, آپ کا فیس آئی ڈی بھی لیتے ہیں, آپ کی پکچر ہوتی ہے. تو یقیناً اس کا اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ہمیں سننے کو آ رہا ہے کہ فیس آئی ڈیز کے تھرو جو ہے اس چیز کو بہتر کیا جائے گا اور اس پہ جو ہے اس کو ایک فلوئنٹ جتنا بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے گا.
2: ٹھیک ہو گیا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر تو ایک چیز بھی کام نہیں کر رہی تو دوسری چیز اس میں فائدہ دے رہی ہے. تو میرے خیال سے مین گول ہمارا نکاح ہی ہونا چاہیے, وہ جس مرضی طریقے سے. اور جہاں تک ابھی آپ نے بات کی کہ ایجڈ لوگوں کی, تو میں بتاتا چلوں کہ ایجڈ لوگوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اکثر گواہیاں جو ہوتی ہیں اور جو گواہ ہوتے ہیں وہ ایجڈ لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ان کا نکاح کیا جا رہا ہے, مگر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تو اکثر اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی انہوں نے اپنا فنگر پرنٹ لگایا اور نہ لگا, تو وہ ایک بڑا ہمیں مسئلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو خیر یہ تو باتیں ہو گئی ساری نکاح کے حوالے سے اور نکاح کس طریقے سے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, مگر ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اور چیزوں کو تھوڑا سا اور ذرا ایک فنی وے میں اور ایک مزیدار وے میں لے کے آتے ہیں کہ نکاح کے بعد کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس میں کیا کیا ہمیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمیں وہاں پہ کیسے دیکھنے کو مل رہی ہے اور کس طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا چل دوں کہ انوائٹس کا ایک بڑا دور ہوتا تھا کہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ کارڈس کو بنایا جاتا تھا اور بڑے خوبصورت طریقے سے کارڈوں کو سجایا جاتا تھا اور کارڈز کے اوپر کس طریقے سے نام لکھوائے جاتے تھے کہ یہ یہ یہ یہ فلانا بندہ آئے گا وی آئی پی لسٹ. اکثر ہمارے تو پاکستانی کلچر میں کارڈ پہ نام نہ لکھوانے کی وجہ سے بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مگر سم ہاؤ یہ کارڈ کا کلچر بڑا ایک فیسینیٹ کرتا تھا ہمارے یہاں پہ. اور اس کے بعد جب شادی سے پہلے سب سے پہلے جانا اور سارے رشتے داروں کے گھر باری باری جا کے کارڈ دینا, اور یہ ہمیں بڑا مسئلہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ اگر میں لاہور کے ایک کونے میں رہتا ہوں کسی سٹی کے کسی شہر کے ایک میں رہتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بہت بہت دور الگ الگ شہروں کے اندر بھی لوگ رہتے تھے اور آپ کو ذمہ داری ہوتی تھی وہاں پہ جا کے ان کے گھر تک کارڈ پہنچانا ہی ہے. اگر تو آپ نہیں پہنچائیں گے تو یو نو پاکستانی کلچر آپ کو بڑے مسئلے آ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ بڑی خوبصورت طریقے سے لے لی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کا وقت ٹائم ایفرٹ اور ایک آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین پاور اس کو بڑا ریڈیوس کر دی ہے ٹیکنالوجی نے, کہ جہاں پہ اب ہم پہلے جا جا کے لوگوں کے گھر کارڈ پہنچاتے تھے اب ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ اس طریقے سے لے لی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ کارڈ کو اتنی زیادہ تعداد کے اندر پرنٹ کروا کے اور باری باری ہر کسی کے گھر پہنچانا. اب اس طریقے سے ہو گیا کہ ہم نیٹ کے تھرو ایزیلی کسی کے گھر اور کسی کو کارڈ پہنچا سکتے ہیں, اس کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنی شادی پہ, اپنے ایک ہیپی ڈے پہ, اپنے ایک ایونٹ پہ کہ آپ اس تاریخ کو اتنے بجے یہاں پہ آ سکتے ہیں, 7 سے لے کے 8 بجے تک رخصتی ہوگی اور اس کے بعد کھانا ہوگا. تو یہ چیزیں آپ بڑی ایزیلی ان کو انفارم کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیجیٹل ایپ کے تھرو.
1: ایسا ہی ہے اعظم, جس طرح ہم نے شو کے آغاز میں ڈسکس کیا کہ جہاں کلچرل ڈائیورسٹی ہے اور ہمیں بہت خوبصورت قسم کے ایونٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت ساری فیسٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں, وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس میں سے میرے خیال سے بہت پرومیننٹ مسئلہ جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ نے ہمیں گھر آ کر انوائٹ نہیں کیا, یا آپ نے ہمیں کارڈ پہ ہمارا نام نہیں لکھا, یا آپ نے ہمیں کارڈ پراپرلی نہیں بھیجا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. شروع میں ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا 20s early 20s کے اندر, ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل جو ہیں early 2000s کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے دوسرے شہروں کی بات کی, ظاہر ہے کہ پاکستان میں لوگ مختلف شہروں میں ہمارے بھی رشتہ دار اور ریلیٹیوز رہا کرتے ہیں, تو پھر ہمیں جا کر بھی کارڈز دینے پڑتے تھے. پھر ایک دور آیا کہ فون کالز پہ اور TCS کے تھرو جو ہے اس کو بہتر کیا گیا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ثمرات ہیں, ڈیجیٹل جو ہے وہ چیزوں کے فائدے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے تھرو اور میسنجنگ ایپس کے تھرو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہمیں یہ جو کلچر ہے کارڈز کا کلچر ہے یہ فیڈ اوے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں میں ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان میں موسٹلی جو ہماری آبادی ہے وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے, اور شادی میں بہت بڑا مسئلہ بجٹ کا ہوتا ہے, اور اس میں سے کافی حد تک جو ہے کیونکہ ہمارے یہاں بڑھ چڑھ کر شادی کو میموریبل بنانے کے لیے اور ایک باعزت طریقے سے جو ہے نا بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اور بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے بہت سارے جتن کیے جاتے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ مہنگے سے مہنگا کارڈ ہو. تو الحمدللہ شکر ہے کہ ہم हमें अब ये कल्चर थोड़ा सा फेड अवे होता हुआ नजर आ रहा है, यकीनन अभी भी है लेकिन थोड़ा सा फेड अवे होता हुआ नजर आ रहा है। और हम देखते हैं कि अब एक टेम्पलेट तैयार की जाती है, एक ग्राफिक तैयार किया जाता है और उस पर जो है उसको एक मैसेजिंग ऐप के थ्रू जो है वो भेज दिया जाता है और कॉल्स के थ्रू उसको कन्फर्म कर लिया जाता है कि आप तक इन्विटेशन पहुँच गया है।
2: ऐसा ही है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं सर। श्री साहब अगर बताता चलूँ कि जिस तरह की आपने इन्वाइट्स की बात की, फोटोग्राफ्स की में अगर हम बात की जाए, फोटोग्राफी की बात की जाए, तो उसमें बहुत चेंजिंग्स आ गई हैं। पहले एक लंबी लंबी रीलें बनाई जाती थी और किस कितना कितनी देर लग जाती थी एक फोटोज आपकी शादी की एक एल्बम आप तक पहुंचने के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है अगर मैं अपने अम्मी अबू के एल्बम्स की बात करूँ शादी की, क्योंकि हमने वही देखी हुई उस दौर की शादियाँ जो कि सिर्फ पिक्चर्स में आई थिंक सो देखी हुई है, तो वो इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जो कि हम फिर पूरी फैमिली बैठ के उसको बड़े तसल्ली से देखती है कि ये पिक्चर ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो वो अब वो चीज़ें इतनी कंज्यूम हो गई हुई और इतनी कम हो गई हुई, इतनी रिड्यूस हो गई हुई हैं कि अभी हम देखते हैं कि वो सारी पिक्चर्स आपको एक फ़ोन पे आपको मिल जाती हैं। आपको जो इतना इतनी एक बड़ी बड़ी किताबें संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इजीली आपके फ़ोन के अंदर सारा डाटा अवेलेबल होता है, बल्कि छोटे छोटे चिप्स के अंदर आपको डाटा आजकल के दौर में देखने को मिल जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी के हवाले से मेरे ख्याल से फोटोग्राफी में भी बहुत सी चेंजिंग्स आई हैं जो कि बड़ी मज़ेदार भी हैं।
1: फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और इन तमाम चीज़ों में बहुत सारी चेंजिंग आई है। अगर हम आपने अपने पेरेंट्स की बात की तो मुझे याद है कि पहले VCR हुआ करते थे और उन पर चीज़ें कैसेट्स के थ्रू जो है वो चला करती थी और पूरी फैमिली बैठ के वो शादी की सेरेमनी जो है उसकी जो वीडियोस होती थी और एक जो पूरी एक फिल्म सी तैयार की जाती थी वो देखा करते थे और उसको तैयार होने में बहुत टाइम लगता था और बड़ी कॉस्टली होती थी। आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ही पिक्चर्स जो हैं ऑन स्पॉट हमारे साथ हैं। एक सेकंड पहले हमने पिक्चर लिया और उसी सेकंड के दसवें हिस्से में वो पिक्चर हमारे ही फ़ोन में सेव है। और उसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात करें उसमें बहुत बेहतरी आई है। पहले एडिटिंग जो है वो रील्स काट के हुआ करती थी, अब हम सॉफ्टवेयर्स पे बैठ के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे बैठ के जो है वो एडिटिंग कर देते हैं और इस प्रोसीजर को हमने बहुत तेज़ भी कर लिया है और टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसको जो बहुत कॉस्टली था इसमें कॉस्ट की भी जो है वो कमी आई है। जी हाँ,
2: बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से हम मजीद इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर तो हम अब पता नहीं डिस्कस करते जाएं तो मेरे ख्याल से ये शो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसी तरीके से मजीद बातें और खूबसूरत खूबसूरत टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें जो कि ना कि सिर्फ शादी के हवाले से बल्कि और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने अपने पंजों को इस तरीके से गाड़ा कि अब वो वहाँ से अपने पंजों को निकालने की जो है इसे कह लें कि बिल्कुल भी इरादा ख़त्म करके बैठ गई हुई है। और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है सोसाइटी के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे मेरे ख्याल से पहले हमें बहुत सी चीज़ें नुकसान फेस करने को हम देखते थे, मगर अब वहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अपनी जिस तरीके से जगह और अपने गलबों को कायम किया ओवरऑल एक सोसाइटी को मिलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इसी तरीके से मजीद और खूबसूरत और मज़ेदार टॉपिक्स आपकी खिदमत में हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चैलेंजेस के बारे

0: अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो आपको पता है कि लाइफ में चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। एक चैलेंज ख़त्म होगा तो फिर नया चैलेंज आ जाएगा, तो वक्त के साथ साथ चैलेंजेस की जो हैयत है या नोयत है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था कि जी हमें नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट के नंबर्स कम हैं। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उसके ऊपर हमने फोकस किया और नंबर्स बढ़ाने की कोशिश की गई। वक्त के साथ साथ नंबर बढ़ते गए, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ हम उन नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में शायद क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। लेकिन इस वक्त जो करंट एरा चल रहा है उसमें शायद नंबर्स के साथ साथ अब हमें क्वालिटी की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम क्वालिटी फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ही आगे जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारी कम्यूनिटी है, उसको क्वालिटी लाइफ की तरफ ले जा सकेंगे। क्वालिटी प्रोफेशनल्स होंगे, क्वालिटी फार्मासिस्ट होंगे, तो इंडस्ट्री में हम क्वालिटी की मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकेंगे, क्वालिटी जो है वो क्वालिटी ऑफ द पेशेंट को हम इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इसलिए अब सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ तवज्जो दें और क्वालिटी प्रोफेशनल्स, क्वालिटी पर्सोनल्स जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। नो डाउट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो क्वालिटी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और UCP उनमें से एक है। बहुत सारे और भी इदारे हैं जो चाह रहे हैं कि वहाँ से पढ़ने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं जब मार्केट में हैं तो वो उनका नाम पैदा करें। उसमें बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या आप नहीं समझते कि जब से एक लोग ये समझते हैं, हमारे जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जब से प्राइवेट एजुकेशन आई है, प्राइवेट सेक्टर आया है, उस वक़्त से लेके अब तक हमारे पास क्वालिटी प्रोड्यूस करना होना बंद हो गई है। ये मैं ये ऐसी बात नहीं है कि मैं प्राइवेट सेक्टर को वो कर रहा हूँ, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे बहुत सारे सीनियर्स इस बारे में कहते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन ने, प्राइवेट सेक्टर ने फार्मेसी का भट्ठा डुबो के रख दिया। क्या ऐसा कहना दुरुस्त है?
0: सर, मुझे नहीं लगता कि ये बात 100% दुरुस्त होगी, क्योंकि अगर आप स्टैट्स निकाल लें, गवर्नमेंट जॉब जो प्रीवियसली या रिसेंट पास्ट में आई हैं, अगर आप उनमें गवर्नमेंट जॉब्स देखें तो बहुत सारे ऐसी सीट्स हैं जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल जो फार्मासिस्ट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने ही फिल किया है। दूसरी बात ये कि CCL में कुछ अरसा पहले एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं अपनी सीट्स जो वेकेंट सीट होती है उनको फिल करने के लिए। तो आपको ये बात सुनकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पे 12 सीटों पे कम्पीट करने वाले बहुत सारे फार्मासिस्ट थे, लेकिन वो 12 की 12 सीटें जो हैं वो ऑक्यूपाई की UCP के स्टूडेंट्स ने, और UCP एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। दूसरे सर, आप देखें, जो मैं चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम यहाँ पे जितने भी टीचर्स हम देखते हैं, रिसर्चर देखते हैं, वो अपनी 100% एफर्ट जो है वो पुट कर रहे होते हैं। एक थोड़ा सा जो बीच में इश्यू आता है वो आता है मेरिट का। चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टूडेंट आते हैं वो बहुत हाई मार्क्स लेके आ रहे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कंपैरेटिवली उनके मार्क्स कम होते हैं। अब इससे हरगिज आप ये मतलब ना ले लें कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते या उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो कम होता है, बस डायरेक्शंस का जो है डिफरेंस होता है। अगर आप उन स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन पे ले आते हैं, राइट पाथ पे ले आते हैं और उनके साथ एफर्ट करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में जाके, जो मार्केट का सर्वे हमें बताता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो होगी प्रोफेशन के हिसाब से चैलेंजेस जो आप कह रहे हैं कि हमें अच्छे क्वालिटी फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, और हो भी रहे हैं हमारे पास, और फार्मासिस्ट की इस वक्त कमी भी है हमारे मार्केट के अंदर, और उसको फुलफिल करने के लिए शायद आपकी बात से मैं यही अखज़ कर रहा हूँ कि उसको फुलफिल करने के लिए जितनी शॉर्टेज थी फार्मासिस्ट की पाकिस्तान में, वो ये प्राइवेट सेक्टर ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है, और अभी भी हमारे पास फार्मासिस्ट जो हैं वो कम है मार्केट के अंदर। तो सेकेंडली ये तो होगी फार्मासिस्ट के हवाले से, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, कम्पिटेंट फार्मासिस्ट के हवाले से। अगर मैं कम्युनिटी के हवाले से चैलेंजेस की बात करूं, क्या हमारे कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट की जो अवेयरनेस है क्या उस तरह से उजागर हुई है पिछले 10 सालों में 20 सालों में, कि अभी तक हम उसी डगर के ऊपर हैं कि जाके मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे और वो बगैर किसी चेक किए

0: प्रिस्क्रिप्शन को और मेडिकेशन उठा के दे देंगे। कम्युनिटी के हवाले से अगर हम बात करें, या हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से बात करें, या फिर हम इनका रोल डिफरेंट हमारे जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स में, इनके बारे में फार्मासिस्ट के रोल का हमारी कम्युनिटी को पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो ये किस तरह से हम इसकी अवेयरनेस हम इसकी डेवलप कर सकते हैं? आप इस बारे में फर्दन अगर आप बात कर सकें, पहले कम्युनिटी की बात कर लें फिर उसके बाद हॉस्पिटल की बात कर लें, तो काइंडली इसके बारे में आपकी क्या राय है?
1: टू बी ऑनेस्ट सर, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो वो हमारी सोसाइटी में बहुत स्लो है। अगर आप अभी भी जो बड़े शहर हैं उनसे हट के देखें तो आपको शायद ही कहीं फार्मासिस्ट नजर आए फार्मेसीज के ऊपर, या लोगों में उसका उस तरह से जो कॉन्सेप्ट है फार्मासिस्ट का आपको लोगों में मिले, जो कॉमन पॉपुलेशन है उसमें मिले। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो फार्मासिस्ट है अगर वो फार्मेसी पे होगा तो उससे कितना एक बेनिफिट हमें हो सकता है।
0: माजरत के साथ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, या आपसे मैं ये पूछना पसंद करूंगा कि क्या फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को अश्योर करना हुकूमत वक्त का काम नहीं है, या किसी खास इदारे का काम नहीं कि वो फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को फार्मेसी पे अश्योर करे? कि इतनी एथिक्स तो अभी तक हमारे अंदर है नहीं कि हम अपने फार्मेसी का लाइसेंस लेके उसमें फार्मासिस्ट को या क्वालिफाइड पर्सन बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर में हम उनको क्वालिफाइड पर्सन को भी बिठाएं। हमारे यहाँ तो ट्रेंड है कि हम क्या करते हैं कि रेंट आउट कर देते हैं, बी कैटेगरी वाले अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं और फार्मासिस्ट अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं। तो ये तो एक ट्रेंड सा चले जा रहा है जो अजल से हम देख रहे हैं। तो इस चीज़ को अश्योर करने के लिए हमारे कुछ मखसूस इदारे होंगे जो उसको अश्योर करेंगे कि हाँ भाई इसको फार्मासिस्ट को वहाँ पे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जब तक ये चैलेंज मेरे ख्याल में पूरा नहीं होगा उस वक्त तक क्या समझते हैं कि क्या हम इस चीज़ को फार्मासिस्ट के रोल को उजागर कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर?
1: देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इशू आपने रेज किया है ना सर, इसमें हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, कहीं पे हमारे जो रेगुलेटरी जो इदारे हैं उनकी कोताही है, तो कहीं पे हमारी खुद की भी इसमें कोताही शामिल है। रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं अगर वो इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को हार्ड एंड फास्ट कर दें कि ये इम्प्लीमेंट होने ही चाहिए तो डेफिनेटली उससे बेहतरी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना चाहिए। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें इस चीज़ को अश्योर करना चाहिए कि हम अपने जो लाइसेंस हैं, हमारी जो कैटेगरीज हैं, वो रेंट आउट ना हों। अगर हमारी कैटेगरीज रेंट आउट नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी। आज जो हम कुछ पैसों की खातिर अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं तो हमें कुशन दे देते हैं उन लोगों को कि वो हमारी इस कैटेगरी को यूज करते हुए अपनी मर्जी से लोगों की सेहत के साथ खेलें, जिस तरह की ड्रग्स वो रखना चाहें, जिस तरह की मेडिसिन वो रखना चाहें वो रखें और अपनी मर्जी से सेल करें। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बाउंड कर दें, खुद से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं जी हमने अपनी कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी बल्कि फार्मेसी पे हमने खुद खड़े होना है, तो उससे एक तो हमारी अहमियत लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और जो एक नोबल प्रोफेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का उसमें को हम सही सर्व कर सकेंगे। जब एक फार्मासिस्ट होगा और उसके सामने जब प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो जिस वे में जिस तरह से एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है एक लेमैन नहीं कर सकता। जो बिजनेसमैन होता है, ये कॉमन सी एक बात है कि बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस को देखता है, उससे चाहे किसी को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो उसने सिर्फ अपना बेनिफिट लेना होता है। बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन है जो अपने बेनिफिट के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को सर्व भी करना चाह रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ साथ हम खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें और अपनी कैटेगरीज को रेंट आउट ना करें, और दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को अश्योर करें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी पे ज़रूर होगा, क्वालिफाइड पर्सन की जो प्रेजेंस है उसको कन्फर्म करें, अश्योर करें, तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया हमारी कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से, फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से। मुझे ये भी साथ साथ बताते जाएं कि क्या जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर या पेशेंट कि वो क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि उस वाकई पता लगे कि यहाँ पर ये बंदा फार्मासिस्ट है और वो कौन कौन सी चीज़ों को चेक कर रहा है और वो पेशेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो चेक करेगा पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद।
1: देखिए सर, जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है फार्मासिस्ट के बाद, तो जो प्राइम रोल बनता है फार्मासिस्ट का वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को एवेल्युएट करे और उसके अंदर अगर कोई एरर है तो वो उन एरर्स को ओमिट करने की कोशिश करे।
0: एरर यहाँ पे किस किस्म के हो सकते हैं डॉक्टर?
1: प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखने को आया है कि डोज से रिलेटेड, यानी एक दवा है उसकी एक मखसूस मकदार जो है वो पेशेंट को लेनी है, लेकिन बाज़ औक़ात डोज जो है वो गलत लिखी होती है, बाज़ औक़ात गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही मेडिसिन दो अलग अलग नामों से प्रिस्क्राइब की होती है। तो एक पेशेंट को अगर एक मेडिसिन चाहिए और वही मेडिसिन दो नामों से वहां पे लिखी हुई है तो वो एक ही वक्त में दोनों मेडिसिन जो अलग अलग नाम से लिखी हुई है, यानी एक मेडिसिन जो दो अलग नाम से लिखी हो वो ले लेगा तो ओवरडोज हो जाएगी, जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो फार्मासिस्ट है उसका यही रोल है कि इन जो एरर्स हैं, ये जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उनको देखे और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिस्पेंस करते हुए जो पेशेंट है उसको काउंसिल भी करे कि इस मेडिसिन को आपने कैसे लेना है। और अगर आप जो मेडिसिन, बाज़ों का पेशेंट रेजिस्ट भी करते हैं कि डॉक्टर साहब ने या एक्स वाई जी किसी ने भी उनको मेडिसिन ये लिख के दिए तो आप उसको निकाल के हो रहे हैं, तो अभी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रॉपर गाइड करे कि उसने अगर ये मेडिसिन उसमें से निकाली है या इसकी डोज कम की है या बढ़ाई है तो वो किस वजह से बढ़ाई है, ताकि पेशेंट जो वो मुतमैन हो सके।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपकी इस बात से तो मैंने ये खर्च किया है कि फार्मासिस्ट ही ड्रग स्पेशलिस्ट है, अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन को तो फार्मासिस्ट ही ड्रग स्पेशलिस्ट है और उसको पता है कि कौन सी मेडिकेशन किस वक्त पे देनी है और किस तरह से देनी है, तो इससे तो यही सामने आ रहा है। तो हम इन चैलेंजेस, तो हमारे पास फार्मेसी प्रोफेशन में डॉक्टर साहब बहुत सारे हैं और इन चैलेंजेस को हम डिस्कस करते रहेंगे। और अभी हमने कम्युनिटी फार्मेसी के एक चैलेंज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, अब हम चलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक पे और उसके बाद फिर हम दोबारा इन्हीं चैलेंजेस को सामने रखते हुए, हम हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए आपसे कुछ इस्तफादा लेंगे। और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही मोजेस गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने कम्युनिटी फार्मेसी के चैलेंजेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से फार्मासिस्ट का रोल हॉस्पिटल के अंदर भी है, तो आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा और वो कितना कलीदी किरदार अदा कर सकता है? डॉक्टर साहब, ये भी एक चीज सुनने में आई थी कि डॉक्टर, नर्सिस एंड फार्मासिस्ट की एक ट्राइंगल होती है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये ट्राइंगल सही तरीके से काम कर रही है? क्या इस चैलेंज से हम अभी तक बाहर निकले हैं कि नहीं निकले? क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पता है मेरा भी प्रोफेशन यही है, तो मैं इस हवाले से आपसे ये कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का इस हॉस्पिटल के अंदर अभी तक कितना रोल डेवलप हो चुका है और कितना होना बाकी है।
2: डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये एक कह लें कि इसके तीन पिलर हैं, एक डॉक्टर्स, नर्सेस और फार्मासिस्ट। तो जब तक ये तीनों पिलर्स जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, हम इस हेल्थ केयर प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा सकते। इसमें अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट को मेडिसिन एक्सपर्ट कहा जाता है, यानी अगर आपने मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको फार्मासिस्ट के पास जाना चाहिए। और आगे से फार्मासिस्ट जो है उसको भी टैग मिला हुआ है मेडिसिन एक्सपर्ट का, तो उसको भी उस मेडिसिन एक्सपर्ट का जो टैग है उसको जस्टिफाई करना है। और वो जस्टिफिकेशन कैसे होगी? थ्रू नॉलेज, थ्रू कॉम्पिटेंसी, थ्रू एक्सपर्टीज। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि फार्मासिस्ट के बगैर हम हेल्थ केयर सिस्टम को आगे लेके जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। हेल्थ केयर सिस्टम के लिए फार्मासिस्ट का साथ में होना जरूरी है। जहां तक आपने बात की हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज की, तो यहाँ पे बदकिस्मती से मुझे चंद एक हॉस्पिटल के अलावा कोई बड़ी एग्जांपल सामने नजर नहीं आ रही जहां मैं ये बताऊं कि वहां पे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो रोल है वो उस सही मानों में अदा किया जा रहा है। हम आप देखते हैं कि हमारे पास आगा खान की एग्जाम्पल है, हमारे पास शौकत खानम की एग्जाम्पल है, जहाँ पे सही मानों में जो फार्मासिस्ट हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अब ये एफर्ट्स की जा रही हैं कि जो फार्मासिस्ट हैं, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, वो सिर्फ मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग तक ना रहें, सिग्नेचरी अथॉरिटी को इंजॉय ना करते रहें, बल्कि वार्ड के भी विजिट करें जहां पे वो सही मानों में देख सकें कि पेशेंट को मेडिकेशन की किस तरह से नीड है और उसके अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल के अंदर वो सर्व कर सकें। तो जब तक हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, जो उनका एक्चुअल रोल है वो उनको वहां पे अदा करना पड़ेगा, तभी ये हेल्थ केयर सिस्टम जो वो आगे ग्रो कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सहरासिल गुफ्तगू हो रही है और इस गुफ्तगू को ख़त्म करने को कतई तौर पर दिल नहीं कर रहा और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम कंटिन्यू करें और आपके साथ एक नया अगला सेशन रखे। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी दें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और हम इसी चीज़ को, इन्हीं चैलेंजेस को ही हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस से ही अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो क्या आप नेक्स्ट अवेलेबल हैं? क्या आप हमें टाइम देंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, डेफिनेटली ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं, उनके अंदर अवेयरनेस जो है वो फैला सकूं, लोगों को बता सकूं कि एक फार्मासिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम के लिए, इस हेल्थ केयर सिस्टम और इस हेल्थ केयर सिस्टम की प्रोग्रेस के लिए एक फार्मासिस्ट कितना ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले आपके साथ जहाँ बैठ के इस तरह की डिस्कशन करने का और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का।
1: इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू द FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया.
1: Fasten your seat belts.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौड़ताल सुरौड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।